कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

निकल

सीने ने बलम बगिया से खून, निकली थी लेने बलम बगिया से।

लता जी जो कहते हैं कि तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इन मुल्क को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके कर्म है।

तितली मेरे घर में आजा, मेरे घर से उड़ कर नहा जा।

0: और
1: गुड मॉर्निंग
2: छोड़ हाथ
3: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
2: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ छोड़ दे मैं कैसे हूँ
3: 1 2 3 4 1 2 3 4
2: थप्पड़
3: रखे डाबर
2: डाबर डाबर अरे डाबर के बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
4: कॉफी जस्ट व्हाट वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टीम फटा

ये साहिब वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिब वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी। हाँ समझा था मैं ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिब वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए ए मोहतरम खेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी मैं इनसे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इनसे मरता हूँ।

मुझे पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे जिम सही इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम देखिए साहिब हो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ देखिए साहिब हो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हैं, क्या खूब कही है दिल की है। हमारे यार तुम भी तो कुछ कहो अपने दिल की।

अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर।

0: मारेगा इन्हें बुरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा
1: क्या
0: यही है।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, जिस बगिया में इस महफिल में हो, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना, ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना।

बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सोनी पीछा ना।

मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन

0: का वादा कि सच्चे पहुंचे रे तारा जान में आई जो
1: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
2: हाय
1: हाय हाय हाय हनी मैं तो बोर हो गया
2: डॉक्टर मिदा डॉक्टर मिदा डॉक्टर

विलेन में कब कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंधों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश चलेंगे।

दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई।

0: गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।
1: दिल पर जब तू

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,

अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम